0: सॉफ्टवेयर कुल बटू विसी पाकट अधिक संख्या के समन्वित जात्यंतर मुल्तन गे जायगत विजय
1: हम काले में ट्रेंडी मसिंदु है ना लंकावे एकम चैनल लेकर लाखाड़े।